0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: फ्रेशर्स फ्रेशर्स फ्रेशर्स, वीकेंड की पूल पार्टी पे एंट्री चाहिए तो रैगिंग एग्जाम में पास होना होगा। ओ बेचारे फ्रेशर्स, सब चिकन की तरह पीले पीले पड़ गए। यू चश्मिश फ्रेशर, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, हॉट सीनियर से प्यार हो गया, अब बस उसे पटाना बाकी है। कम ऑन, शो अस हाउ इट्स डन। शू बैम।

0: ये फ्रेशर, यू चॉकलेट फ्रेशर, ऑल दिस जो है छे स्टफ, मतलब क्या है?
1: आंखों को बंद कर जब तुमको देखा, जो तुम हो उससे भी प्यारा देखा।

0: प्रेशर, जब चांस मिलता है ऐसे पकड़ लेती हूं. डू यू लाइक मी?
1: एक्चुअली यस.
0: गुड. 'Cause I think.

0: लखर लखर ओ मेरो नकले लखर लखर नकले माया लखर लखर
1: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: विज्ञान पोलिक्लिनिक सेन्टर प्राली अर्याल मेडिकल हल गोर्खा नगरपालिका साथ नयाँ बजार गोर्खामा स्वास्थ्य परिषद सम्बन्धी सूचना। हाम्रा सेवाहरू एक्स रे सेवा, भिडियो एक्स रे सेवा, प्रयोगशाला, ईसीजी, बिरामीको

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।